0: जय जय गोपाल जय जय
1: गोपाल
0: राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय
1: गोविंद जय जय गोपाल
0: बोलो गोविंद।

सगलेशलिया निर्भो निरंकार दयालिया जी जंत सगले प्रतपलिया रहाओ। एक है श्रम कर गाडी गढ़ है, एक है सुपन है दाम ना छड़ है। राज कमाए करी जिन थैली ता कह संग न चंचल चलिया। एक है प्राण पिंड ते प्यारी, एक संची तज बाब महतारी। सुत मीत प्रात ते गुहजी ता कह निपटना होई खलिया। होए अदूत बैठे लाए तारी, जोगी जति पंडित बिचारी। ग्रे मड़ी मसानी बन मैं बसते, ऊठ तिना कह लागी पलिया। काटे बंधन ठाकर जाके, हर हर नाम बस्यो जीता कै। साध संग पहे जन मुक्ते, गत पाई नानक नजर निहलिया। मारू महला पंजवा, सिमरो एक निरंजन सोऊ। जाते बिरथा जात ना को, मात गर्भ मैं जिन प्रतपारिया। जियो पिंड दे साज सवारिया, सोई विधाता खिन खिन जपिया। जिस सिमरत अवगुण सब ढकी है, चरण कमल और अंतर तारो। बिखिया बंते जियो उधारो, करण पलाह मिटै बिललाटा। जप गोविंद भरम पौ फाटा, साह संग विरला को पाए। नानक ता कह बल बल जाए, राम नाम मंतन आधारा। जो सिमरै तिसका निस्तारा रहाओ। मिथ्या वस्त सत कर मानी, हित लायो सठ मूड अज्ञानी। काम क्रोध लो मदमाता, कौडी बदलै जन्म गवाता। अपना छोट पर आया राता, माया मद मंतन संग जाता। त्रिशन ना बूझै करतक लोला, ऊनी आस मिथ्या सब बोला। आवत अकेला जात अकेला, हम तुम संग झूठे सब बोला। पाए ठगौरी आप बुलायो, नानक कीर्तना जाए मिटायो। पस पंखी भूत अर प्रेता, बबे जोनी फिरत्या नेता। जै जानो तै रह न पावै, थान बिहून उठ उठ फिरतावै। मन तन बासना बहुत विस्तारा, अहम मेव मूठो बेचारा। अनक दोख अर बहुत सजाई, ताकी कीमत कहन न जाई। प्रभ बिसरत नरक मैं पाया, तै मात ना बंद ना मीत ना जाया। जिसको होत कृपाल स्वामी, सो जन नानक पार ग्रामी। प्रहमत प्रहमत प्रभ सरणी आया, दीना नाथ जगत पित माया। प्रभ दयाल दुख दर्द विदारण, जिस पावै तिस ही निस्तारण। अंधकूप ते कड नहारा, प्रेम भगत होवत निस्तारा। साध रूप अपना तन धारिया, महा अगन ते आप उबारिया। जप तप संजम इसते किश नाही, आदि अंत प्रभ अगमा गाही। नाम देहे मांगै दास तेरा, हर जीवन पद नानक प्रभ मेरा। मारू महला पंजवा, कत कौ डहकावो लोगा। मोहन दीन कृपाई ऐसी जान पाई। सरण सूरो गुरदाता, राखै आप वडाई रहाओ। भगता का आज्ञाकारी, सदा सदा सुखदाई। अपने कौ कृपा करियो, एक नाम ते आई। नानक दीन नाम मांगै, दुतिया भरम चुकाई। मारू महला पंजवा, मेरा ठाकर अत भारा। मोहे सेवक बेचारा, मोहन लाल मेरा प्रीत मन प्राणा। मोको देहो दाना रहाओ। सगले मैं देखे जोई, बीजो अवर ना कोई। जियन प्रतपाल समाहे, है हुसी आहे। दया मोहे की जय देवा, नानक लागो सेवा। मारू महला पंजवा, पत ते उदाहरण।